0: पुरै त्रिशुली आमा लाइभ लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ
1: भिडियो नबनाउनु है भिडियो नबनाउनु है भिडियो नबनाउनु है